0: BJ 战舰。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदाय बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24 37।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।